0: सन्जो कहाँ हो कि यति हतार हतारमा?
1: अन्त कहाँ हुनु नि, नमन सपिङ सेन्टरमा हो।
0: अरे अरे सपना, तिमी कता जान लागे कि?
2: कहाँ हुनु, नमन सपिङ सेन्टरतिर।
0: ए रमेश पर्ख न, कता हेरेको के?
3: कहाँ रहिनी दिदी, नेपालगञ्जमा पाइने सबको सामान नमन सपिङ सेन्टरमा पाए पो मारे। म फेरि नमन सपिङ सेन्टरमा जाइदु
0: नै। सबैजनाले नमन नमन भन्छन्, के छ र त्यहाँ?
1: के छैन र त्यहाँ? खाद्य तथा किरानाका सामान, कस्मेटिक सामान, दैनिक उपभोग्य सामग्री, होटलका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामान, गिफ्ट खेलौना र बर्थडेका सामग्री, सजावटका सामग्री, संगीत र खेलकुदका सामग्री, घर र भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडा, स्वदेशी तथा विदेशी चिसो पेय पदार्थ होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा पाइन्छ। अनि त्यहाँ नगर कहाँ जाउँ त सबैजना?
0: रोप राइटर दुर्गा प्रसाद खरेल र निशान भण्डारी, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98570029017 र 98570037582।
1: नमन सपिङ सेन्टर ठाकुरबाबा नगरपालिका 1 भुरीगाउँ बजार बर्दिया विजय प्लाजा होटलको अगाडि।
4: वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी थारूङ की प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादू भैया दीदी बहने होकर यह कुमार महीना के 25 गते अटवार के दिन 16 जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर संजाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में हिनाहिल पहुंचे कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्खर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

0: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98482974.
1: हार्दिक आमन्त्रण, वेशभूषा, भाषा, संस्कृति संरक्षण और प्रवर्धन गरी हारुन के

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्भर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

0: हार्दिक आमन्त्रण। वेशभूषा, भाषा, संस्कृति संरक्षण औ प्रवर्धन गरी थारूनकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति जगाए। विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2083 को पावन अवसरमा आयोजना हुने 16 जीवरा धरना तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा यहाँहरूको उपस्थितिका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौ। जीवरा धरना कार्यक्रम सञ्चालन हुने मिति यही असोज 25 गते आइतबार। स्थान ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 3 जुडपानी बगना बजार बर्दिया। आयोजक ठाकुरबाबा बर्गर सञ्जाल समिति बर्दिया।
1: बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्खर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी खारुङ की प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादू भैया दीदी बहना उग्र यही कुंवर महीना के 25 गते अटवार के दिन 16 जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर संजाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में हिनाहिला पहुंचे कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्भर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

0: रेडियो टाइगर 99.2 MHz नामै काफी छ।
1: वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी खारुङकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादु भैया दिदी बहिनी हुक्र यही पौर महिना के 25 गते अटवार के दिन 14 जुरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर संजाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका 3 दुधपानी बगनहा

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्खर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

0: हार्दिक आमन्त्रण। वेशभूषा, भाषा, संस्कृति संरक्षण औ प्रवर्धन गरी थारूनको प्राचीन मौलिक कला संस्कृति जगाए। विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2083 को पावन अवसरमा आयोजना हुने 16 जीवरा धर्ना तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा यहाँहरूको उपस्थितिका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौ। जीवरा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन हुने मिति यही असोज 25 गते आइतबार। स्थान ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नम्बर 3 जुडपानी बग्ना बजार बर्दिया। आयोजक ठाकुर बाबा बर्गर सञ्जाल समिति बर्दिया।
1: आवाज रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ट्ज।

वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी थारूंग की प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादू भैया दीदी बहने हुक्र यह कुंवर महीना के 25 गते अटवार के दिन चोरों जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में और ठाकुर बाबा बरघर संजाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में विना हिलक हो कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवर 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्भर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

0: बच्चाको जाँच, पत्थरीको जाँच, पित्त थैली तथा कलेजोको जाँच, छातीमा भएको गाँठा गुठीको जाँच, थाइराइड स्क्यान, सुपरफिसियल स्क्यान लगायत भिडियो एक्सरे सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच हुने हुँदा मौकाको फाइदा उठाउन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क साइना मेडिकल हल, भुरीगाउँ बजार, बर्दिया, वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी। नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 442 55 909 र 98 442 97 517।
1: वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी थारुङके प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादु भैया दिदी बहिना हुक्र, यही कुवार महिना के 25 गते अटवार के दिन 16 जुरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में और ठाकुर बाबा बरघर सञ्जाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में हिनाहिलक हो कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना रिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्फ सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं नाच सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं नाना जी थैंक यू, मैं ठीक हो गया, डॉक्टर साहब थैंक यू, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरी टांगें चल सकती है, मैं नाच सकता हूँ।